0: सम्मोहन प्राप्त गरौं।
1: एउटा सानो स्वर्ग मौलाकालिका मन्दिर
2: धार्मिक सेवा समिति मौलाकालिका मन्दिर गैंडाकोट 9 84 फोन 078-50-12-26 वेबसाइट www.maulakalika.org.np।

0: ZFM 101.6 BJ विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 20437।
1: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो।

0: Güzel FM 88.9.
1: Vijay Tanchek. विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागी गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडी गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 24437।
2: अहिले रातिको 9 बज्यो।